0: है
1: लाइका रेडियो लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउन हाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउन हाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउन हाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
0: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 ग्रीन्स बाय डैनियो प्राइम लोकेशन
1: हाई अप्रिसिएशन
0: इन दुबई
2: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
3: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 8574 8410।
1: साफो ट्रैवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
1: Soothing you through the night and early morning. This is Leica Radio Midlands.

रखा विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा दूर।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवें, लख होवें लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच

0: राम बलराम और उससे पहले फिल्म पहचान से आपने सुना सनम ओ सनम. 4:06 इज द टाइम. वेकी वेकी राइज एंड शाइन. ब्रेकफास्ट विद काजल. जी आप सुन रहे हैं काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो एंड दैट्स ऑफ कोर्स लाइक अ गॉड यूकेस नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन. And of course, Leica Radio Midlands. और दोनों आप सुन सकते हैं Dab Radio पे online and Leica Radio mobile app. और भूलिए मत कि Leica Radio हमारी जो sister radio station है, Leica Radio London और Leica Radio Manchester, आप सुन सकते हैं Donny Brasco जो है आपके साथ 10 बजे तक as well at Leica Radio Network. And हमारी तीन additional radio stations जो है वो है Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi and Leica Gold 2, available on the app, online and Alexa as well. So you've got a variety of radio stations to listen into. 7 radio stations and a podcast. Podcast na bhuliye. हमारे जो पॉडकास्ट है इसमें काफी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आउटस्पोकन है, ब्लंड है, फनी है, काफी कुछ. यू गॉट वॉच, यू मस्ट वॉच आवर पॉडकास्ट एज़ वेल. अवेलेबल ऑन Amazon, अवेलेबल ऑन Google, अवेलेबल ऑन Spotify as well. Do watch out for our Leica Radio podcast as well. Right, so we start off with two beautiful tracks, Pehchan and Ram Baram. We've got another beautiful one coming up very soon from the hit film Chadda.
1: This is Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: A pound can buy you 127 Indian rupees. Make sure you transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: एक बहुत ही सैड न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. हमारी जो कैपेचिनो मशीन है वो बंद हो चुका है और अभी नहीं चल रहा है, डैमेज हो गया है, पता नहीं क्या क्या हो गया है. तो आज कोई कैपेचिनो नहीं होंगे, कल भी नहीं होंगे और होंगे और उसके बाद भी नहीं, क्योंकि हम वो मशीन रिप्लेस नहीं करने जा रहे. सो इज काजल फीलिंग सैड? यस, आई एम फीलिंग टायर्ड. यस, क्योंकि मुझे कैपेचिनो नहीं मिल रहा है. लेकिन ये कॉफी जो मैंने अभी बनाई, लेट्स ट्राई इट. आई मीन इट्स एन इंडियन कॉफी स्टारा मेड, सो लेट्स सी इफ इट इज नाइस. इट्स ओके आई सपोज. लेकिन यार, यू नो, सुबह सुबह यू ऑलवेज नीड दैट वन ड्रिंक व्हिच यू आर सो यूज्ड टू. या यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? व्हिच वन इज योर्स? टेल मी, व्हिच इज अ वन ड्रिंक दैट स्टार्ट्स ऑफ योर मॉर्निंग?
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Good night.
4: Achha, good night.

0: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार
0: जी सरकार।

0: Biker Radio.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 574 8410। दैट्स 8574 8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
4: ਭੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ।
5: ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ, ਦੇਖ ਰੋ ਇਨ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
6: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
5: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
7: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
8: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
7: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
8: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
7: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
8: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
7: કોલ 0208900 2323। ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
8: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
0: લાઈક અ રેડિયો નેટવર્ક, પ્રાઉડ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર, રાગસાન। It's summer on the Leica Radio Network. Your wake-up call. This is Carl.

0: Good morning. स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर यह है लाइका गोल्ड, भाई पुराने गीतों का खजाना। और मैं हूं रवि शर्मा, आपका पुराना दोस्त। अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं। गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और सब बहुत कुछ मसाला लेकर के स्टूडियो में हाजिर हूं। थैंक्स कहता हूं पहले काजल को, शील भी बैक टुमारो मॉर्निंग। और बहन भाइयों, शायरी से करेंगे शुरुआत और उसके बाद परोसेंगे न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीतों की सौगात। बस आप जुड़ जाइए हमारे साथ कुछ पल के लिए, गम को भुलाकर तो देखिए। हाँ, कुछ पल के लिए गम को भुलाकर तो देखिए, खुशियों से दोस्ती को बढ़ाकर तो देखिए। मशहूर कर रहे हैं क्यों चेहरे पे सजा के, अरे नामो निशान दुख का मिटा कर तो देखिए। ख्वाहिश देखने की अगर रब का कोई रूप, तो रोते हुए चेहरों को हंसा कर तो देखिए। और आने ही नहीं देगा परेशानियां करीब, सुन लीजिए, आने ही नहीं देगा परेशानियां करीब, रवि शर्मा का प्रोग्राम लगा कर तो देखिए।
1: Return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Refreshing Asian hits across the Leica Radio network.

0: खत्म हो गया गाना, ऐसे भी खत्म करते हैं क्या गीत को? एकदम जैसे भाई वो इमरजेंसी ब्रेक लगती है ऐसे ब्रेक लगा। लेकिन दो गीत हमने आपको सुनवा दिए हैं और मुझे यकीन है कि भाई गीत पसंद आए होंगे आपको और शायरी भी। भाई ये अंदाज है मनोरंजन की शुरुआत का, लाइका रेडियो नेटवर्क के इस लाइका गोल्ड पर। तो भाइयों दोपहर बाद एक बजे तक जुड़े रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी, फुटबॉल का जिक्र भी होगा, चिंतन भी होगा और भाई गीत होंगे रंग बिरंगे, यानी कई रंगों के। हालांकि गीतों पर सीमा है कि लिमिट है एक तय की गई है कि भाई इतने ज्यादा नए गीत आप नहीं बजा सकते, आपको पुरानी दुनिया में लौटना पड़ेगा, पुराने गीत पुराने कलाकारों की आवाजें शामिल रहेंगी और भी कई तरह की लिमिट्स के बीच रहते हुए, सीमा के भीतर रहते हुए भाई हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा रोचक रूप देने की कोशिश करेंगे। राइट, आइए अब सबसे पहले तो जान लें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके पाउंड का क्या रेट दे रहे हैं भारत में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: पैसे भिजवाना चाहते हैं भाई भारत में अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, तो यहाँ एक पाउंड के बदले SBI UK आज जो रेट दे रहे हैं वो है 127 रुपए, 127 रुपीज मैक्सिमम दे आर गिविंग। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, या आप ब्रांच में जाकर के भिजवा सकते हैं, ऑनलाइन भी भिजवा सकते हैं या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके आप पैसे भेज सकते हैं। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: रेगलो द्वारा प्रायोजित, भाई लीजिए हम आपको रिपोर्ट देते हैं। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और क्वार्टर फाइनल की टीमें फाइनल होने जा रही हैं। क्वार्टर फाइनल की टीमें फाइनली, कौन कौन सी टीमें क्वार्टर फाइनल में भाई पहुंची हैं? 6 टीमें पहुंच चुकी हैं, 2 और पहुंचेंगी। और आपको बता दूं कि 2 मैच आज जो खेले जाएंगे उनसे पहले ये बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और बेल्जियम के बीच जो मैच हुआ उसमें बेल्जियम की जीत हुई और बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल के लिए एंट्री कर ली है। उधर भाई इंग्लैंड भी पहुंच चुका है, इंग्लैंड और नॉर्वे का मैच होगा, उनमें से पता लगेगा कि कौन जा पाता है सेमीफाइनल में। और फिर सेमी यानी क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें, सेमीफाइनल में 4 टीमें, फाइनल में 2 टीमें और फिर चैंपियन होगी 1 टीम, बस इतना सफर बाकी है। तो आज के मैचेस बता दूं मैं आपको, शाम 5 बजे इजिप्ट और अर्जेंटीना के बीच बड़ा दिलचस्प मैच होने वाला है और भाई फिर रात को 9 बजे भिड़ंत होगी स्विट्जरलैंड और कोलंबिया की। जोड़े रखेंगे हम आपको फुटबॉल से, ग्राउंड से, नतीजों से, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। और भाई धन्यवाद दें उनको जो ये नतीजे और ये बातें आप तक पहुँचाते हैं फुटबॉल के बारे में। डोंट फॉरगेट यू कैन गेट your 15 minutes free legal advice with our sponsors Red Law if you

0: मेंशन लाएगा। बस इतनी सी शर्त है। फुटबॉल के बारे में स्पॉन्सर करके ये जानकारी पहुंचाने वाले रैक लॉयर से 15 मिनट फ्री कानूनी मशवरा आप ले सकते हैं लाइका मेंशन करके।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Ye hai Laika Radio. Laika
2: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 1499, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 1199, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन
4: इन रियल स्टेट, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation
4: in Dubai.
5: आपके सामने एक रेड बटन है,
6: दबा दिया,
5: नहीं दबाना था।
7: The madness is back, धमाल 4.
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
7: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
10: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता?
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
13: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
14: ऑर्डर ऑनलाइन एट poojasweets.com। फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
15: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
14: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
16: 40 मिलियन पीपल लिसन टू कमर्शियल रेडियो ईच वीक, दैट्स 80 मिलियन ईयर्स गिव अ टेक। Amplify your advertising at radiocentre.org.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और लीजिए साहब, गीत सुनवाने से पहले ये पंक्तियां, ये लाइनें सामने आ गई हैं कि लड़ते रहे हैं तेरे तस्वर से रात भर, अब याद हमें इश्क के आदाब नहीं है, और जिनकी सलामती को था लाजिम तेरा वजूद, आंखें वो सलामत हैं तेरे ख्वाब नहीं हैं, औरों पे लुटा शौक से सब बेकरारियां, अब हम भी तेरे वास्ते बेताब नहीं हैं, इस आसमाने इश्क पे रहते हैं, रहते तो हैं मगर हम सिर्फ दाग दाग हैं, महताब नहीं है, लड़ते रहे हैं तेरे तस्वर से रात भर, अब याद हमें इश्क के आदाब नहीं है।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। आज के प्रमुख समाचारों में भाई ज्यादातर तो खेल की खबरें शामिल हैं, फुटबॉल की खबरें हैं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और उसमें बड़े उलटफेर हो रहे हैं। स्पेन ने पुर्तगाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, रोनाल्डो का सपना टूट गया है। कहते हैं कि स्पेन से हारने के बाद रोते हुए मैदान से बाहर निकले रोनाल्डो। पहलगाम हमला पूरक आरोप पत्र में हाफिज सईद के खिलाफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धारा जोड़ी गई है। जिम्बाब्वे T20 सीरीज के लिए संजू सैमसन टीम से बाहर हो गए हैं, रिंकू सिंह की वापसी हुई है। और इनके अलावा अन्य खबरें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद ने रिएक्ट किया है। उन्होंने ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर रिएक्ट करते हुए कहा कि इस्तीफों का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी सिर्फ चोरी नहीं बल्कि डकैती है। इस घटना से निश्चित रूप से भगवान राम के मंदिर की पवित्रता पर आंच आई है और अयोध्या के लोगों की छवि भी धूमिल हुई है। अयोध्या के उस इलाके के MP का यह बयान है। इंटरनेशनल खबरों में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जब तक ईरान के खिलाफ धमकियां जारी रहेंगी तब तक अमेरिका के साथ आखिरी समझौते के लिए बातचीत शुरू नहीं होगी। अराग़ची का यह बयान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वे इस पूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को OTT से हटाने पर पंजाब के एक मंत्री का बयान आया है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मामले में समाचार एजेंसी ANI से कहा कि 1992 से 1997 के बीच पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य के नौजवानों पर बहुत अत्याचार हुए थे। उन घटनाओं को दिखाने वाली फिल्म पर पाबंदी लगाना बिल्कुल गलत है। ऐसा लगता है कि अकाली दल, BJP और कांग्रेस आपस में मिल चुके हैं क्योंकि ये फिल्म इन तीनों पार्टियों के कच्चे चिट्ठे को उजागर करती है। इसमें दिखाया गया कि कैसे पंजाब के नौजवानों पर हमला होता था और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला इंडोनेशिया का सबसे बड़ा अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी सिविल ऑनर से, जिसका नाम है बिंतांग आदिपूर्णा, से सम्मानित किया है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर इसकी जानकारी दी है। पोस्ट में लिखा गया है कि आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। मोदी जी की ओर से लिखा गया है, ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के हिस्टोरिकल और आत्मीय रिश्तों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नरेंद्र मोदी। मुंबई से आने वाली खबरों में भाई वहां भारी बारिश का कहर जो है टूट पड़ा है। स्कूल कॉलेज बंद, पुणे में भूस्खलन से धरती के खिसकने से 4 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में बारिश का कहर लगातार आज मंगलवार को भी जारी है। सुबह लोगों की नींद घने बादलों और तेज हवाओं के बीच खुली। एहतियात के तौर पर मुंबई के सभी सरकारी और प्राइवेट और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, छुट्टी घोषित की गई है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अपना बयान दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम हमले के बाद हुए भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को लेकर फिर से टिप्पणी की है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस को लेकर के किए गए सवाल पर ट्रंप ने दावा किया कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष भी रुकवाया और दूसरे मामलों में भी ऐसा किया। भारत और पाकिस्तान का मामला बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि न्यूक्लियर जंग का खतरा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुताबिक उसमें 4 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी, शायद 5 करोड़ भी मारे जा सकते थे, इसलिए मैंने वो जंग रुकवाई। दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 4,800 कर्मचारियों की छटनी करने का ऐलान किया है। ये उसके कुल कर्मचारियों का करीब 2.1% है। इस छटनी की सबसे बड़ी मार कंपनी के एक्सबॉक्स डिवीजन पर पड़ेगी। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने अमेरिका को हराकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बेल्जियम ने अमेरिका के खिलाफ 4 गोल दागे, जबकि अमेरिका सिर्फ 1 ही गोल कर पाया। और रोनाल्डो का वर्ल्ड कप सफर खत्म हो गया है। स्पेन से हारने के बाद कहते हैं कि रोते हुए मैदान से बाहर निकले रोनाल्डो। फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में गिने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार कैरियर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीते बिना ही समाप्त हो गया है। उनका आखिरी वर्ल्ड कप मैच जो है पुर्तगाल के लिए खेला गया था और वो 1-0 की हार के साथ खत्म हुआ है। स्पेन की टीम ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर रोनाल्डो का सपना तोड़ दिया है। फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने पुर्तगाल को बाहर का रास्ता दिखाया, तो भाई अब 6 टीमें तो क्लियर हो चुकी हैं कि क्वार्टर फाइनल में कौन कौन सी शामिल होने जा रही हैं। 2 टीमों का फैसला आज हो जाएगा। 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में एंटर करेंगी, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल तक का सफर जारी रहेगा। हम जोड़े रखेंगे आपको फुटबॉल के साथ। आज के प्रमुख समाचार समाप्त होते हैं।
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: धार्मिक महत्व का गीत है भाई। एक खबर जो हम खबरों में शामिल नहीं कर पाए, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने अब्बा के अपने पिता के जनाजे में नजर नहीं आए। संडे को हजारों लोग दिवंगत आयतुल्लाह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान ईरानी शासन के कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। अली खामनेई के बाकी तीन बेटे मसूद, मुस्तफा और मैसम, ये तीनों रस्म में शामिल हुए। उनके साथ राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ अहमद वाहिदी समेत कई अधिकारी मौजूद थे, लेकिन मुज्तबा दिखाई नहीं पड़े और इसको लेकर की अटकलें और बढ़ रही हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि उन्हें अमेरिकी इजराइल हवाई हमले में चोट लगी थी, जिसमें उनके पिता की मौत हुई थी, उसमें वो भी जख्मी हुए थे। सच क्या है सामने आएगा।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: This is Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और साउथ हॉल ट्रेवल का पैगाम आपके नाम भाई। साउथ हॉल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डेस्क ऑन 02085748410। भाई दुबई डील्स के लिए आप इनसे संपर्क कीजिएगा, क्योंकि ये मशहूर तो है, अटल प्रोटेक्टेड भी हैं और तमाम सुविधाओं के लिए बड़े मशहूर हैं।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस वक्त ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं और ये वक्त है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। भाई आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं हमारे एक पुराने मित्र प्रोफेसर भीम देव का आलेख शामिल करते हैं। प्रोफेसर भीम आजकल सिडनी में निवास करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। इस समय वहां रात है। कहते हैं मैं सुन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज की इस घटना को, इस वही वाकई को ध्यान में रखते हुए ये चिंतन में बात शामिल करेंगे। साथ में उन्होंने एक और रिक्वेस्ट भेजी है। कहते हैं कि एक मेरे बहुत पुराने मित्र ब्रिटेन में पवित्र सिंह भामरा होते थे। भाई आपके श्रोताओं में अगर कोई उन्हें जानता है और उन्हें पता है कि वो कहाँ हैं, तो मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। पीटर नाम से मशहूर थे पवित्र सिंह भामरा, उन दिनों टैक्सी चलाते थे। कहते हैं जब मैं ब्रिटेन आया था, बहुत पहले, करीब 45 बरस पहले की बात है, तो कहते मेरा पहला परिचय पीटर से ही हुआ। पवित्र सिंह भामरा पीटर नाम से मशहूर थे। कहते उनकी कोई खोज खबर मिले तो भाई मुझ तक पहुंचाना। भाई लोग मुझ तक पहुंचाएंगे, रेडियो पर भिजवाएंगे, तो मैं प्रोफेसर भीम, आपका ईमेल एड्रेस मेरे पास है, मैं जरूर भिजवाऊंगा। आपने चिंतन भेजा है जिस पते पर, उसी पर। साथ ही प्रोफेसर भीम कहते हैं कि उनके बेटे, वो अगर सुन रहे हो तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, पहले हम उनका चिंतन शामिल करते हैं, फिर आपको याद दिलाएंगे कि पीटर भामरा के बारे में क्यों जानना चाहते हैं प्रोफेसर भीम। आज के चिंतन में आज के इतिहास को वो याद दिला रहे हैं। कहते हैं एक धर्म स्थान पर मैं रहता था, वहां पर एक महिला को बहुत उदास बैठे देखा। मैंने पूछा, माताजी आज बहुत सैड दिखाई पड़ रही हैं। मां की आंखें छलक गई। बुजुर्ग महिला, बहुत बुजुर्ग नहीं, अधेड़ उम्र की, और वो रेगुलरली इस धर्म स्थान पर आती थी, पूजा पाठ में बड़ी आस्था रखती थी। उन्हें उदास देखकर कहते हैं मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा तो कहने लगी, क्या बताऊं, मेरे बेटे को जेल हो गई 15 महीने की, छोटी उम्र का है, सलाखों के पीछे रहेगा 15 महीने। अरे माताजी, क्या किया बेटे ने ऐसा, कैसे बताऊं। मां बोली, आपके इस धर्म स्थान को उसने आग लगाने की कोशिश की थी। कहते मैं चौंका, माताजी उसकी रिपोर्ट तो मैंने ही लिखाई, कोर्ट में गवाह के रूप में मैं ही गया था, मतलब आपके बेटे को जेल मैंने ही करवाई। छलकती आंखें और सुबकते अल्फाज, कहने लगी, बेटा इसमें आपका क्या कसूर है, आग भड़क जाती तो आप तो यहीं रहते हैं, आप जलते वो भी मेरा ही नुकसान था बेटा, जख्मी होते मुझे बहुत तकलीफ होती, आप भी मेरे बच्चे की तरह हैं। तो मां, बेटे ने ऐसा क्यों किया, फैसले लेने के लिए इतनी मैच्योर उम्र भी नहीं है उसकी, फिर किस नफरत से, किस कारण से, किस गुस्से से उसने ऐसा किया। संभल कर मां बोली, छोटे छोटे बच्चों को आतंक के कामों में जोड़ने वाले और लोग होते हैं, जो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, उनकी तो जिंदगी बनाते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को इस तरह से बरगलाते हैं, उन्हें तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़े, वैर विरोध और टेररिज्म की घटनाओं के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे कामों के लिए वही लोग जिम्मेदार होते हैं।
भीम कहते हैं कि आज 7 जुलाई है और मुझे भी याद आ रहा है वो वाक्या, वो घटना, वो हादसा जो ब्रिटेन में घटा। 7 जुलाई का दिन यहां ब्रिटेन की हिस्ट्री में एक बहुत ही दुखद और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 7 जुलाई 2005 को लंदन में हुए समन्वित टेररिस्ट अटैक्स को 777 लंदन बॉम्बिंग कहा जाता है। याद होगा बहुत सारे लोगों को, सुबह के बिजी वक्त में 4 सुसाइड अटैकर्स ने लगभग 1 घंटे के भीतर 4 धमाके किए। कितने ही परिवारों की धड़कनें रुक गई, मां बाप चिंतित, शहर जैसे स्थिर हो गया था। 3 धमाके लंदन अंडरग्राउंड की ट्रेनों में हुए और 4th विस्फोट टेविस्टॉक स्क्वायर में एक डबल डेकर बस में हुआ। 52 मासूम लोगों की जाने गई। अब धमाके करने वालों से पूछे, क्या इन लोगों से तुम्हारी कोई डायरेक्ट दुश्मनी थी? कुछ भी तो नहीं। 52 मासूम लोग मारे गए, 800 के करीब लोग जख्मी हुए, 4 हमलावर भी विस्फोट में मारे गए, खुद भी वो इन धमाकों का शिकार हो गए। लेकिन इन हमलों ने पूरे ब्रिटेन को झकझोर दिया। इसके बाद आतंकवाद रोधी कानून और सिक्योरिटी व्यवस्था को और मजबूत किया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई, आपातकालीन सेवाओं के समन्वय और तैयारी में काफी सुधार किए गए और अब हर साल 7 जुलाई को पूरे ब्रिटेन में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है, खासकर लंदन के हाइड पार्क के 7-7 स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। कई जगहों पर मौन रखकर उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने बिना किसी गलती के अपनी जान गंवाई। कोई काम पर जा रहा था, कोई स्कूल कॉलेज, कोई अपने कारोबार से, कोई व्यापार से, कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई गलती नहीं थी उनकी। ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था बल्कि साहस, एकजुटता और मानवीय सहयोग की भी मिसाल बना जब उस दिन इमरजेंसी सेवाओं, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने मिलकर हजारों लोगों की मदद भी की, संकट की घड़ी में असाधारण धैर्य का परिचय दिया। पर बहनों भाइयों, एक सवाल तो उठता है, कौन बनाता है ये आतंकवादी? कौन इनके ब्रेन वॉश करके इनके दिलो दिमाग में इतना जहर भरता है कि वो मासूम लोगों की जान लेते हैं, ऐसे लोगों की जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, वास्ता नहीं होता? वही जो बार बार कहते हैं कि हम उनसे अलग हैं, वो और हैं, हम और हैं। हमारी पहचान अलग है, हमारा भगवान अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा खानदान अलग है। नहीं भाई, खानदान अलग होता तो अपनी उंगली में जरा सा पिन चुभा के देखिए, जो खून निकलेगा ना वो उसी रंग का होगा जो मेरे खून का रंग है, जो सबके खून का रंग है, लाल। क्योंकि हमारा खूनदान एक है, हमारा खानदान एक है। ये जान लो, पहचान लो, इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं है। तुम अपनों की जान लेते हो, अपनों का नुकसान करते हो। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम।

आज का चिंतन, आज का विचार, थॉट फॉर द डे, जिसके लिए आलेख हमें सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर भीमदेव ने भिजवाया। भीम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बरसों पुरानी यादें ताजा हो गई जब आप यूके आए थे, और आपने आप जानना चाहा है कि आपके पुराने मित्र पवित्र सिंह सामरा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। भाई उनके सुपुत्र अगर सुन रहे हो तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चिंतन के साथ जोड़ा गया गीत फिल्म सबका साथी से लिया गया था, वही भावना गीत में भी शामिल थी जो हमारे आज के संदेश में थी, और कुछ यादें भी जुड़ी थी आज के चिंतन के आलेख के साथ। वो खतरनाक यादें भाई, आतंकवादी हमले की, 7/7 है आज, 7 जुलाई है आज, और बहुत सारे हमारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं। तो भाई ये संदेश पढ़ने से पहले, अमरपाल अगर आप सुन रहे हैं, अमरपाल सामरा, तो हमसे संपर्क कीजिएगा। आपके पिताश्री के पुराने दोस्त प्रोफेसर भीम याद कर रहे हैं उन्हें। स्लो से रानी पम्मी जी स्लो से याद कर रहे हैं, चिंतन की प्रशंसा में अपने भाई उद्गार लिख रहे हैं। प्रतिभा जी, पुरानी दुखद यादें ताजा हो गई, कहती है वाकई इंसान हैवान बन जाता है जब वो मासूम लोगों की जान लेता है।

0: कहती आज मेरे पूज्य पिताश्री की भी पुण्यतिथि है, मन दुखी है, माता पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, भगवान महावीर उनकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में सदगति प्रदान करें। और प्रतिभाजी माता पिता के लिए हम यही कहेंगे कि माता पिता हमसे कभी अलग नहीं होते, क्योंकि हम उनसे बने हैं, तो वह हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में वो विद्यमान है। रागनी जी आपका संदेश मिला जगदीश जी बुशी से, महेंद्र भाई क्रोइडन से, सुनीता शर्मा जी, नीला चौधरी जी, हरविंदर जी, हमारे चिंतन के रेगुलर लिसनर्स जो है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, निर्मला, अरुण एंड भूपेंद्र पटेल, रंजन, जैस्मीन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर जी आपका संदेश भी मिला है, थैंक यू वेरी मच। जानना चाहते हैं बलबीर की, ये कौन सी फिल्म का गीत था, सबका साथी था फिल्म का नाम, जो आज के चिंतन के साथ आपने सुना। और किसी और गीत का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपने संदेश थोड़ी देर पहले भेजा था, तो कौन सा धार्मिक गीत, उसके बोल भी लिखे तो मैं ढूंढ के फिर आपको दोहरा दूंगा, बता दूंगा। रोहित जी संदेश मिला, हंसा बोरा, विजय घनोवा मॉरिशस वाले, अनिल सोनी वियाना वाले हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। भारत गंगाराम शहर, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस शेख मलाड मुंबई से हमें संदेश भेज रहे हैं। हिना जी थैंक यू वेरी मच, करसन पिंडोरिया, हेटल सोलंकी, आंटी जी आपका पैगाम भी मिल गया है, पुनीता जी, सुनीता जी, अनीता जी, सारिता जी, जहीर खान साहब थैंक यू वेरी मच। भाई आप सबको धन्यवाद दोहराते हुए आइए चिंतन को अब समेटते हैं और अपने मूल कार्यक्रम मनोरंजन की ओर लौटते हैं, चिंतन समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, भाई अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत में तो हमारा रेट नोट कीजिए, 127 रुपीज मैक्सिमम वी कैन गिव यू फॉर वन पाउंड। और आप कैसे भिजवा सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपनों को पैसे भिजवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई।
3: ये है लाइका रेडियो।
4: Like a radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: देखिए साहब, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो फीफा मुकाबले चल रहे हैं और क्वार्टर फाइनल में जो टीमें, छह टीमों का तो ऐलान हो चुका, पहुंच चुकी हैं, दो टीमें आज शामिल होंगी और आठ टीमें होती हैं क्वार्टर फाइनल के लिए। पहले क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल, ये तीन जो है स्टेज बाकी हैं इस फुटबॉल महाकुंभ की। तो आपको बता दें कि अर्जेंटीना और इजिप्ट का मुकाबला आज शाम 5 बजे होने वाला है और उनमें से जो टीम जीतेगी वो भी क्वार्टर फाइनल के लिए आगे बढ़ जाएगी। और दूसरा मुकाबला कोलंबिया और स्विट्जरलैंड के बीच होगा रात 9 बजे, इनमें से जो विजेता टीम होगी वो क्वार्टर फाइनल का जो ग्रुप बन रहा है, आठ टीमें जो क्वार्टर फाइनल के लिए भिड़ेंगे भाई, उनमें वो टीम शामिल होगी। तो इस तरह से आठ टीमें होंगी क्वार्टर फाइनल में, चार होंगी सेमीफाइनल में, दो टीमें रहेंगी फाइनल के लिए और एक टीम बनेगी चैंपियन। और थ्रू आउट इस सफर में हम आपको जोड़े रखेंगे फीफा खेलों के साथ, मुकाबलों के साथ, नतीजों के साथ। साथ में ये भी बता दें भाई, जो ये स्पॉन्सर करके जानकारी आप तक पहुंचाते हैं उनकी तरफ से ये स्पेशल ऑफर है, भूलना नहीं कि वो जो उनसे आप मशवरा करें तो 15 मिनट की लीगल एडवाइस जो है, कानूनी मशवरा, वो 15 मिनट के लिए बिल्कुल फ्री देंगे अगर आप लाइका मेंशन करेंगे उनसे बात करते हुए तो. डोंट फॉरगेट यू कैन गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस बाय मेंशनिंग लाइका टू आवर स्पॉन्सर्स रेक लॉ. उनका नंबर आ रहा है, नोट की लीजिएगा, अभी आ रहा है.
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Leica Radio. After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the body. Hollywood's Surinderella, Panto fun for all the family. Radio partner Leica Radio.
5: आपके सामने एक red button है.
6: दबा दिया.
5: नहीं दबाना था.
7: The madness is back. Dhamal 4.
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
7: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
10: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
7: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. थैंक यू.
8: जी टीवी एच डी पर देखिए एक नई कहानी.
9: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
8: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
9: दिल तो टूट भी गया,
8: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
10: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
8: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी एच डी पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
11: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app.
12: Leica Radio.
11: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: ये है लाइका रेडियो, फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और साहब, गीत सुनाने से पहले हमारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं, और आप कौन हैं जो जानना चाह रहे हैं कि भाई वो फोन नंबर जो आप रैक लॉ का बताते हैं, बड़ा फास्ट बताते हैं, भाई मैंने वो हमारे रिकॉर्डेड वर्जन में है, कमर्शियल्स के रूप में आप सुनते हैं, लेकिन अगर नहीं नोट कर पाते हो तो फिर से बता रहा हूं। वो कह रहे हैं 0203-345-2000 पर आप लाइका मेंशन करके और 15 मिनट का कानूनी मशवरा बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं। लाइका जरूर मेंशन कीजिएगा, 0203-345-2000, दैट्स देयर नंबर, रैक लॉ।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a song भाई औलाद वालों, फूलो फलो। और ये गीत कौन सी फिल्म से था, एक फूल दो माली। हाँ हाँ, दरअसल बात यह कि रवि साहब की बनाई धुनों पर ये जो जो भिखारी लोग होते हैं भाई, दुआएं देते हुए कुछ मांगते हैं, तो ऐसे कई गीत रवि साहब ने बनाए और वो इतने हिट हुए। बल्कि सच पूछो तो इनका जो एक गीत हिट हुआ था बहुत ज़्यादा, वो था ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उन फिल्म बहुत पुरानी फिल्म थी। बाली भाई जानते होंगे, पुराने लोग पुरानी चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट, फिर फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं। उन्होंने अपने घर का नाम भी उसी फिल्म के नाम पर रखा हुआ है, रवि साहब ने, मुंबई में। और वो गीत जो है वो इतना फेमस हुआ था कि रवि साहब ने खुद बताया था, बोले एक बार हम कार में मरीन ड्राइव पर जा रहे थे तो साथ में मेरे राजेंद्र कृष्ण थे जो गीतकार हैं, और भी एक दो दोस्त थे, तो हम चार लोग गाड़ी में जा रहे थे। ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकी तो एक भिखारी आके कटोरा सामने कर देता है, खनकाता है उसने कुछ पड़े सिक्कों को और कहता है ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। तो राजेंद्र कृष्ण कहते हैं कि रवि साहब दे दो, इस पैसे से बहुत कमाया है आप, इस गीत से बहुत कमाया है आपने। तो कह उसको पैसे दिए भाई, वो कहते हमारा ही गीत गा के हमसे पैसे मांग रहा था वो भिखारी। लेकिन और भी कई गीत ऐसे हैं, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये गीत तो शायद लिखा भी रवि साहब ने ही था भाई। रवि साहब की बनाई धुने जो है कानों के रास्ते सीधे दिल में उतरती हैं, और कुछ खास तरह के गीत जैसे विदाई गीत हैं या फिर कुछ रोमांटिक गीत हैं, हर तरह के रंगों में कुछ गीत रवि साहब ने खुद भी गाए हैं, कभी सुनवाएंगे प्रोग्राम में। संगीतकार रवि की बात कर रहे हैं हम, और साहब ये गीत औलाद वालों फूलो फलो, ये भी धुन उन्होंने बनाई और अमर हो गया गीत, जब भी सुनवाते हैं बड़ा नया लगता है। आगे बढ़ते हैं,
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा। पॉडकास्ट अपडेट।
2: और भाई याद दिला दें आपको, लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड आ चुका है, पॉडकास्ट का नया एपिसोड नंबर 23, होस्टेड बाय दीप राजा, राइज इन विमेंस क्रिकेट। महिलाओं के क्रिकेट में भाई आप देख रहे हैं कि इतना लोकप्रिय हो रहा था, स्टेडियम को खचाखच भरे देखकर लगता था कि अब इस क्रिकेट में भी दर्शकों की रुचि और स्पॉन्सर्स की रुचि, खिलाड़ी तो आ ही रहे हैं एक से बढ़ के एक आगे, तो उन पर चर्चा करने के लिए हमारा एपिसोड 23 जरूर देखिएगा। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीम प्लेटफॉर्म जो है उन पर अवेलेबल है।
0: Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: Yeah.
0: Leica Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
0: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
6: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: The Janaan and J. Dodd summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janaan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janaan and J. Dodd summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now. Birmingham Indian Film Festival is here. Experience groundbreaking premieres, powerful documentaries, restored classics and the very best of British South Asian cinema at Midlands, Arts Centre and Lockworth Cinema of Wolverhampton. Discover stories of courage, identity, motherhood, disability, love and change. Plus meet the filmmakers through exclusive Q&As and panel discussions. Don't just watch cinema, experience it. Book now at birminghamindianfilmfestival.co.uk. Radio Partners and Leica Radio Network.
3: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: अरे हाँ, ये कौन सा महीना है?
1: जनवरी। ऋतु सुहानी झूमती है।
0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे बाबा, तुम्हें नहीं किसी चोर को ढूंढती है।

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।

ए जिंदगी गले लगाले, सुरेश वाडकर का स्वर था भाई, क्या शब्दावली थी। और बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दिए। पहला गीत था, हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई, फिल्म का नाम बता रहा था, जो दो गीत सुनवाए उनमें पहला गीत

0: देखिए आज कैलाश खैर अपना जन्मदिन मना रहे हैं, गायक कलाकार सुरीले सिंगर कैलाश खैर। और भाई उनके अलावा क्रिकेट के जगत में MS धोनी, उनका भी जन्मदिन आज ही है। 7 जुलाई को 1981 में रांची में जन्मे थे MS यानी महेंद्र सिंह धोनी। क्या बात है भाई, संघर्ष की एक कहानी है, इनका जीवन भी फिल्म बन चुकी है। ये किसी समय रेलवे में काम करते थे, टिकट चेकर के रूप में थोड़े दिन इन्होंने काम किया, लेकिन क्रिकेट से अपना सम रिश्ता बनाए रखा। आज 7 जुलाई को और किसका जन्मदिन है, मैं ढूंढ रहा था कि किसी विशेष व्यक्ति का भाई, वैसे जो हमारी 8वीं पातशाही सिख धर्म में गुरु हरकिशन जी का भी अवतार यानी जन्मदिन आज ही पड़ता है। और इसके अलावा और भी कई लोग, एक और नाम मुझे याद आ रहा है, श्रीकांत बोला, इनके ऊपर मैंने चिंतन में एक बार एक प्रसंग भी सुनाया था। श्रीकांत बोला वो एक ऐसा नौजवान है जो आंखों से तो दृष्टि उनके पास नहीं है, लेकिन मन की दृष्टि बड़ी तीव्र है और उनकी विल पावर तो क्या कहें साहब। अब तो वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, अपनी कारखाने हैं, विदेशों में भी उनका भाई कारोबार है और भारत में भी। लेकिन एक समय था कि इन्हें मनहूस मान के इनके माता पिता त्यागने लगे थे इन्हें, और बिना आंखों के इनको स्कूल कॉलेज में भी दिक्कत आई पढ़ाई लिखाई में। पर ब्रिलियंट थे, साहसी थे, दमदार थे साहब, और अपनी बात के धनी थे। तो साहब जिद करके इन्होंने शिक्षा मंत्रालय में खलबली मचा दी थी, शिक्षा के क्षेत्र में अपने लिए सीट क्रिएट करवाई कि मैं अंधा हूं तो क्या हुआ, बंदा हूं, बड़ा तेज दिमाग है मेरे पास। तो साहब बड़े कामयाब व्यक्तित्व के स्वामी श्रीकांत बोला का भी जन्मदिन आज ही है, 7 जुलाई 1991 में साउथ इंडिया में जन्मे थे ये। अनिल विश्वास, वो भी संगीतकार भाई, आज ही के दिन जन्मे थे, कंपोजर, 1914 में जन्मे थे। और आपके घर परिवार में अगर किसी का आज जन्मदिन पड़ता हो तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, रिटर्न्स ऑफ द डे बधाई स्वीकार कीजिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं, अब भी रेट अच्छा चल रहा है, पैसे क्यों नहीं भिजवा रहे हैं अपने लोगों को भारत में। भाई वो कहते हैं कि आज का रेट नोट कीजिए, इस समय एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 126.8 रुपीज, 126.80 रुपए। यू कैन भाई सेंड द मनी वाया ब्रांच ऑनलाइन और भाई यूजिंग SBI योनो मोबाइल ऐप, TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203
7: 763-5757. Greens by Danube.

0: प्राइम लोकेशन
1: हाई अप्रिसिएशन
0: इन दुबई।
2: आपके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना था।
3: The madness is back, धमाल 4।
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
3: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
5: लौड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
3: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situations में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
9: इट वाज जस्ट अनदर डे, अ फैमिलियर ड्राइव थ्रू फैमिलियर कंट्री, बट देन जस्ट अराउंड द कॉर्नर came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
10: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
11: Four beers, please, garçon!
10: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
12: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
13: Artist of the Week. Kaun hai? गीतकार शकील बदायूनी। मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा, कि मोहब्बत का हूं राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं।

0: दो बदन फिल्म का गीत शकील बदायूनी का लिखा हुआ और रवि साहब की बनाई हुई धुन पर सवार ये आवाज रफी साहब की थी। और बहन भाइयों इस शपटा के कलाकार हैं शकील बदायूनी गीतकार, और क्या गीत लिखे साहब। बहुत छोटी उम्र में उनका निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 1916 में और 1970 में 20 अप्रैल के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया। और भाई अपनी जिंदगी में जो गीत लिखे ना, कई गीत तो उनकी शायरी जो है उनकी जिंदगी का तर्जुमा थी, या वो खुद कह के गए। और ये गीत जो सुना भाई, इसके अलावा रवि साहब के साथ उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे और उन्हीं में से एक गीत था चौदहवीं का चांद हो, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बेस्ट गीतकार थे शकील बदायूनी और बेस्ट संगीतकार थे रवि साहब। वो गीत रफी साहब की आवाज में था। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे इस सप्ताह। जुड़े रहिएगा आप लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड के साथ।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले गा रहे थे गीत भाई फिल्म राजकुमार, वो पुरानी वाली 1964 की फिल्म, और शम्मी कपूर थे शायद हीरो और साधना, आई एम नॉट श्योर भाई, इतनी पुरानी फिल्मों के बारे में मैं आजकल का नौजवान क्या जानू है ना। किरण कहती हैं आपके गीतों में पुराने जमाने की बातें जो है वो लौट आती हैं, ये लाइका गोल्ड पर जो गीत सुनवाए जाते हैं ना, एक कहानी लफ्जों में उतर करके दिल में समा जाती है। किरण जी आप सुनती हैं जानकर बहुत अच्छा लगा, सुनते रहिएगा। और निर्मला कहती हैं जिस गीत का आप जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि रवि साहब के घर का नाम भी वही है, तो नोट कीजिए वो उसका नाम है वचन। क्या बढ़िया वचन निभाया आपने। ऐसा है निर्मला जी, वो याद तो था मुझे, शायद मैंने पहले जिक्र भी किया, लेकिन क्या है कि भूल जाता हूँ कभी कभी ना, बिल्कुल एकदम माइक के सामने दिमाग खाली हो जाता है। होता है ऐसा कभी कभी। नहीं नहीं नहीं नहीं, उम्र का कोई असर नहीं, देखिए आप इधर उधर उधर नहीं उधर नहीं। थैंक यू निर्मला जी। और हमीदा फ्रॉम बेल्जियम आप सुन रही हैं, ब्लेस यू मेक अस लाफ एंड क्राई। हाँ बात तो दोनों ही है भाई, दोनों कुछ दर्द भरे गीत और कुछ दर्द भरी यादें आके रुला जाती हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि पैचअप करें उसे कुछ चटपटी बातों से, अटपटे गीतों से, भाई आपको हंसाने की कोशिश भी करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेयरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
1: Laika Radio।
0: लाइका गोल्ड पर सुन रहे हैं आप मनोरंजन विद रवि शर्मा। और साहब एक संदेश भी तो था ना हमारे पास, कहाँ गया रे वो संदेश जो देना था आपको। हाँ भाई, हमारे यहाँ जो हमारे राम जो शो आ रहा है, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द दिस शो हमारे राम, स्टारिंग एक्लीम्ड एक्टर आशुतोष राणा, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं भाई आशुतोष राणा, और संस्कृत में ही भाषा होती है उनकी। और राहुल आरभुचज, आशुतोष राणा जहाँ रावण बने हैं तो राहुल उसमें राम बने हैं। इट टेक्स प्लेस बिटवीन 9 and 12 July एट लंडन्स एवेंटिम अपोलो, हैमरस्मिथ में है भाई। अपनी टिकटों की व्यवस्था कर लीजिएगा, बहुत अच्छा शो है, बहुत नाम कमा चुका है।
1: This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: Pran sahab ki yaad aayegi.
4: Yaari hai imaan mera, yaar meri zindagi.
0: ऐसी फिल्म भाई जिसने रातों रात अमिताभ बच्चन को चोटी के सितारों में शामिल करवा दिया। और मुझे याद है भाई जया भादुरी, जया बच्चन जी यहाँ लंदन में स्टेज पर आई, देवानंद साहब के लिए वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी प्रोग्राम में देवानंद साहब ने अपनी किताब लिखी हुई, जो उनकी किताब थी, उस पर साइन करके मुझे भेंट की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जया बच्चन जी ने देव साहब की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे और आखिर में जानते उन्होंने क्या, थैंक यू फॉर लीविंग जंजीर। जंजीर के लिए कहते हैं कि देव साहब को चुना गया था, उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार किया, व्यस्त है ज्यादा, और ये फिल्म अमिताभ बच्चन के हिस्से में आई, तो साहब रातों रात जो है अमिताभ बच्चन चोटी के सितारों में शामिल हो गए, एंग्री यंग मैन। पर ये गीत प्राण साहब पर पिक्चराइज हुआ था, जिस यार की वो चर्चा कर रहे हैं वो अमिताभ बच्चन।

0: वेल भाई याद दिला दूं आपको कि आज दिलीप साहब की पुण्यतिथि है, दिलीप कुमार साहब की, और हमारे बाली भाई जो है सामग्री जुटा रहे हैं, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं उनके बारे में। लेकिन अभी जो साउथ होल्ड ट्रेवल वालों का संदेश है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। साउथ होल्ड ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ होल्ड ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Yeh hai
3: Malaika Radio.
2: ਭੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ।
5: ਪੁੱਛੇ ਵੱਜਦੇ ਸਲੂਟ ਕਾਸਤੋਨੀ ਪਿੱਲੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਜਦਾ।
2: ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, एट Protected.

थोड़ा सहने दो गम जुदाई का, प्यार इतना भी ज्यादा ना करो। थोड़ा सहने दो गम जुदाई का, प्यार इतना भी ज्यादा ना करो। ये ना हो मैं खुशी से मर जाऊं, आज रोकने का इरादा ना करो। मैंने भाइयों जैसा मैंने बताया कि आज मोहम्मद यूसुफ खान यानी प्रोफेशनली नोन एज दिलीप कुमार अभिनय सम्राट की पुण्यतिथि है और बाली भाई बहुत सारी सामग्री उनके बारे में जुटा कर ला रहे हैं, पर रवि शर्मा साहब अब जा रहे हैं। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव ए सुपर्ब डे एंड बाय बाय फ्रॉम मी नाउ।

0: स्टाइल ऑफ एक्टिंग. जी हाँ, मेथड एक्टिंग इट्स यू कैन से बिल्ट ऑन स्टैनिस स्लाविस्कीज सिस्टम. एक बंदा था स्टैनिस स्लाविस्की, उनकी एक सिस्टम थी, अ रेंज ऑफ रिहर्सल टेक्निक्स टू एनकरेज सिंसियर एंड एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंसेज बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसिंग कैरेक्टर. जो इमोशंस और मोटिवेशन को डिवेलप करता है. इट वॉज डिवेलप्ड बाय दिस रशियन एक्टर डायरेक्टर कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की. एंड देन थ्रू हिज बुक्स एन एक्टर प्रिपेयर्स देन बिल्डिंग अ कैरेक्टर एंड क्रिएटिंग अ रोल. 1957 की पब्लिकेशन जो थी. एंड मेथड एक्टिंग वॉज पायनियर्ड इन इंडिया बाय दिलीप कुमार साहब. फिल्म दीदार, मुगले आजम, इन फिल्मों में आप देखो तो इन्होंने ये एक्टिंग मेथड एक्टिंग डिवेलप किया था. नोबडी न्यू दिस बट इंस्पायर्ड वर बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन. मनोज कुमार जी ने एक्चुअली कहा भी था, शाहरुख खान, कमल हासन, फिर अनिल कपूर, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वन ऑफ द लेटेस्ट एक्टर्स, दे ऑल टुक दिस मेथड एक्टिंग विच वॉज पायनियर्ड बाय दिलीप कुमार साहब. एंड आई कुड गो ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट मेथड एक्टिंग. लेकिन इनकी जो हम इनकी जो विनिंग एबिलिटी जो थी, फिल्म फेयर विन्स में 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, जैसे शाहरुख खान के 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, अमिताभ बच्चन 5 अवार्ड्स, ऋतिक रोशन और रणबीर 4 अवार्ड्स, राजेश खन्ना 3 अवार्ड्स, नसीरुद्दीन शाह 3, आमिर खान, रणवीर सिंह, ये सब ने 3 अवार्ड जीते, और राज कपूर ने 2 अवार्ड्स जीते थे, देवानंद साहब ने, अशोक कुमार साहब, सुनील दत्त जी ने 2-2 अवार्ड्स जीते थे, लेकिन दिलीप कुमार साहब 8 अवार्ड्स. और अगर देखा जाए तो 8 से ज्यादा ही होने चाहिए थे, क्योंकि नॉमिनेशंस देखो, यू नो, मधुमती फिल्म. अब जितने अवार्ड्स इनको नॉमिनेट किए गए थे जिनके लिए, उसके सामने किसने जीते थे वो मैं आपको बताऊंगा एज वी गो अलोंग. जुड़े रहिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार साहब. 7th of July 2021 is when he passed away.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And £1 in your British sterling pound can get you up to 126.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
6: Also explore 2026 cruises
5: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167225. We're at all protected.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: आपके सामने एक रेड बटन है. नहीं दबाना था.
2: The madness is back. धमाल 4.
3: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
2: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
4: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
2: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
5: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता.
6: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street. CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
7: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरू से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
8: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
9: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: fin.
1: वाओ वाओ वाओ, ऐसे गाने सुनकर ना दिल खुश हो जाता है. बिकॉज यू एक तो होता है कि हम साथ में गाते हैं इन गानों के, क्योंकि हमें इतने सालों से लिरिक्स सब याद रह जाती है. और दिलीप साहब की याद में और भी दिल खुश हो जाता है जब हम ये गाने आंख बंद करके दिलीप साहब को देख रहे हैं और गाना गा रहे हैं, है ना. अब मैंने आपको बताया था कि ही हैड नॉमिनेशंस ऑफ अबाउट 12 नॉमिनेशंस फॉर 12 फिल्म्स, जिसमें उनको नॉमिनेट किया गया था. लेकिन सामने किस एक्टर को अवार्ड मिला था वो मैं आपको बता रहा हूं. जैसे कि मधुमती फिल्म, आपने अभी गाना सुना सुहाना सफर और ये मौसम हसी, दैट वाज एन अवार्ड विनिंग आई थिंक रोल दैट ही प्लेड. लेकिन उनको नॉमिनेशन मिला. अब नॉमिनेशन उनको मिला तो जीता कौन, हु गॉट द अवार्ड? तो देवानंद साहब को उस साल में अवार्ड मिला था 1958, एंड द अवार्ड वाज काला पानी. एंड पैगाम फिल्म 1959 की, उसमें राज कपूर जी को अवार्ड मिला था फॉर फिल्म अनाड़ी, और दिलीप साहब को नॉमिनेशन मिला था. मुगले आजम, आई मीन द ग्रेटेस्ट फिल्म एवर नोन, उसमें उनको नॉमिनेट किया गया. लेकिन कौन जीता था, यू गोना लाफ, दिलीप कुमार साहब ही जीते थे उस साल. लेकिन फॉर फिल्म कोहिनूर उनको दो नॉमिनेशंस दिए गए थे, मुगले आजम और कोहिनूर. और कोहिनूर के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था. गंगा जमुना, अभी गंगा जमुना, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म, एंड अवार्ड ना मिले तो पीपल राइट कर देंगे, ऐसी बात हो गई थी. लेकिन राज कपूर जी को अवार्ड मिला था फॉर जिस देश में गंगा रहती है. You can understand that, I suppose. And then Dil Diya Dard Liya, 1966 ki film jo thi, usme Dilip sahab ko nomination mila, lekin Dev sahab ko mil gaya for film Guide. Wo bhi competition sahi tha. And then film Aadmi. Film Aadmi aur film Sangarsh, ye dono film mein 1968 ki, usme dono mein unko nomination mila. फिल्म आदमी के लिए और फिल्म संघर्ष के लिए. लेकिन शम्मी कपूर जी को मिला फिल्म ब्रह्मचारी के लिए, विच इज वेल अंडरस्टूड. यस, शम्मी जी डिड डिजर्व एन अवार्ड फॉर ब्रह्मचारी. फिल्म गोपी 1970, उसमें उनको नॉमिनेशन मिला, लेकिन अवार्ड मिला राजेश खन्ना को फॉर फिल्म सच्चा झूठा. I mean, he was the happening actor those years. And then Sagina, film Sagina. Aapko maloom hai Sagina Mahato, ek South Indian ki film thi. Film Sagina mein inko 1974 mein nomination mila, lekin Rajesh Khanna le gaye award for film Avishkar. Ji haan. And then film Bairag, 1976 ki. Wo bhi achha role tha, lekin let's face it, Sanjeev Kumar को मिला अवार्ड फॉर फिल्म अर्जुन पंडित. एंड देन फिल्म मशाल 1984 की, मशाल फिल्म में उनको नॉमिनेशन मिला तो अनुपम खेर को अवार्ड मिला फॉर फिल्म सारांश. सारांश वाज अ ब्यूटीफुली एक्टेड फिल्म बाय अनुपम खेर एंड ही डिजर्व द अवार्ड. फिल्म सौदागर, दैट वाज 1991 की फिल्म सौदागर, उसमें अमिताभ बच्चन जी को मिला फॉर फिल्म हम. अब मैंने कुछ फिल्में जो मेंशन की, दैट वाज लाइक सौदागर फिल्म, दोज वर

0: संजय दत्त। वो गाना था ना, हाथों की चंद लकीरों पे। हाँ, संजय दत्त भी थे उसमें और शम्मी कपूर जी भी थे। एंड देन 1986 की फिल्म अगेन सुभाष गई, डायरेक्टेड द फिल्म, फिल्म कर्मा। उसमें तो ही वॉज अ जेलर एंड नूतन जी के साथ एक्टिंग किया था, जैकी श्रॉफ भी थे, अनिल कपूर भी थे। एंड देन फिल्म सौदागर 1991 की, एंड दैट वॉज अगेन अ फैबुलस फिल्म जिसमें दिलीप कुमार, दोनों कुमार कटे हुए थे, दैट वॉज दिलीप कुमार एंड राजकुमार, दोनों भीड़ गए थे उस फिल्म के अंदर। वॉट ए फिल्म इट वॉज। एंड इट वॉज द डेब्यू ऑफ मनीषा कोयराला, सौदागर फिल्म याद है ना, एंड विवेक मोशरान, इन दोनों का डेब्यू था। एंड दिलीप कुमार एंड राजकुमार, इन दोनों की अदाकारी थी। दैट वॉज अनदर वेरी मेमोरेबल फिल्म सौदागर। एंड लाइक आई सेड, ही गॉट नॉमिनेशंस फॉर ऑल दीज फिल्म्स लाइक सौदागर, लेकिन अमिताभ बच्चन गॉट द अवॉर्ड फॉर फिल्म हम। आई होप यू आर एंजॉइंग द ट्रिब्यूट दैट आई एम डूइंग ऑफ दिलीप कुमार साहब फॉर हिज फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी। On Like a Gold, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट आपकी खिदमत में विद गोल्ड आफ्टरनून्स, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड likeagold.com एंड 364th डे ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 126.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: Well, you know what happened yesterday, and that was a match of matches. That was Spain versus Portugal, and Spain won. Portugal is out. Then came Belgium versus United States of America. Belgium scored 4 goals, United States 1 goal, so Belgium won. Now the last 2 matches of the round of 16 are Argentina versus Egypt at 5 p.m. today and Switzerland versus Colombia at 9 p.m. today. In dono matches ke baad shuru hoga quarterfinals. That is FIFA 2026. Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Gold Afternoons.
4: Gold Afternoons.
3: Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
5: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
5: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
6: 82 Assistant Street, LE12JU, yeah, Rowlett Hill, LE54UN.
5: Big deals, big savings, while stocks last.
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting, dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry,

0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
1: मजा आया ना आपको, बिकॉज द फेवरेट पार्ट इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग आर द सरगम्स एंड एवरीथिंग. सा नि द प म प ग म रे सा नि रे सा गा रे प म सा. मजा आ जाता है जब भी ऐसे सरगम आती है और तबले के जो बोल आते हैं. एंड दैट वॉज द सॉन्ग फ्रॉम फिल्म कोहिनूर. एंड मुखर्जी जी ने क्या अदाकारी की थी उनके साथ. एंड दिलीप कुमार साहब ने इतनी मेहनत करके एक्चुअली सितार बजाना सीखा उस गाने में. दैट्स व्हाट यू कॉल डेडिकेशन. एन एक्टर हु एक्चुअली वर्क्स हार्ड अपॉन हिज रोल्स. वी आर रिमेम्बरिंग दिलीप कुमार साहब. लेकिन ज्यादा बात करूंगा तो एक गाना कट जाएगा. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. या
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. This is Leica Radio across the Midlands. By mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3386, Indian rupees 127.01, Pakistani rupees 372.11, Afghan Afghanis 85.14 and Kenyan shillings 172.97.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £100.39 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa or by using our Leica Radio mobile app.
1: Film Shikast.

मोहब्बत का एक गाना मैंने चुना है. थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस. आई एम ग्लैड यू लाइक माय सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ दिलीप कुमार साहब. इन द फर्स्ट आवर इट वाज ऑल मॉडर्न सॉन्ग्स एंड देन बैकवर्ड्स अगेन. सज्जाद हुसैन का संगीत इन द नेक्स्ट वन संगदिल फिल्म. तलत महमूद जी ने गाया. फिल्म है संगदिल. राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स और सज्जाद हुसैन का संगीत.

हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि सैंडी शाह जी का विंटेज शो चल रहा है, लेकिन दिलीप कुमार साहब है तो मुझे करना ही पड़ता है। बट थैंक यू फॉर लाइकिंग। यस, ऑन अ क्वाइट अ चिरपी नोट, घोड़ा गाड़ी फिल्म ऑन 1952, नौशाद का संगीत और शकील बदायूनी की लिरिक्स।

0: पे इन अ मॉडर्नाइज्ड वे, बट देन द ट्रीटमेंट इज अलग, लेकिन बीट वही है. सो बड़ा मजा आता है व्हेन यू लिसन टू सॉन्ग्स विद सिमिलर बीट्स, बट यू डोंट रियलाइज व्हाई यू आर एंजॉयिंग इट, बिकॉज एक के बाद दूसरा गाना आता है, आपके मन में वो बीट चल रही है, एंड देन सेकेंड गाना शुरू होता है और वो बीट कंटिन्यू रहती है. सो लास्ट 12 मिनट आपने जो सुने दो गाने, उसमें सेम बीट आपके जहन में चलती जाती है, तो उसका मज़ा ही अलग होता है. और मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे ही चीज़ें नोटिस करके आपके सामने पेश करने का. सो सो हैप्पी दैट यू एन्जॉयड माई सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फॉर दिलीप साहब. मैंने क्या किया था कि सोचा कि इन्होंने एक्टिंग किया था 1940s से लेकर 1990s तक, तो ये 50 साल मैं कैसे आपके सामने पेश करूं. एंड देन सडनली आई सेट डाउन एंड आई थॉट अबाउट इट लास्ट नाइट, एंड आई थॉट लेट मी गो डाउनवर्ड्स. मैं 1990s से शुरुआत करूंगा इन द फर्स्ट आवर एंड देन गो इन टू द सेकेंड आवर रिसीडिंग बैकवर्ड्स. सो यू एन्जॉयड इट एंड आई एन्जॉयड इट टू, बिकॉज क्वाइट अ चैलेंज टू प्रेजेंट ऑल सुपर डुपर सॉन्ग्स ऑफ दिलीप साहब. And it quite worked. I'm quite happy about that because your message is said so. Next, हमारे artist of the week जो है शकील बदायूनी जी, उनका मैंने एक गाना चुना है. फिल्म है दिल दिया दर्द लिया. अब उसके अंदर एक डायलॉग आता है, वो डायलॉग है दिलीप कुमार साहब का और जॉनी वॉकर साहब का. तो वो डायलॉग पहले मैं आपको सुनाऊंगा, गुस्ताखी माफ, क्योंकि गाने से पहले अगर मैं डायलॉग सुनाऊंगा तो आपको गाना सुनने का मज़ा और ही आएगा कुछ. एंड उसमें जो संगीत भी इतना प्यारा है और आवाज़ है रफ़ी साहब की, इनका कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था. नौशाद साहब, दिलीप साहब और शकील बदायूनी, इनकी लिरिक्स वगैरह बहुत खूबसूरत. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ऑल, टू टॉप इट ऑल, रफ़ी साहब, दैट्स राइट. सो यू गॉट इन फॉर अ ट्रीट विद आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yee-hoo.
1: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: So now, looking at football, FIFA 2026, we've got Argentina versus Egypt at 5 p.m. And then we got Switzerland versus Colombia at 9 p.m. And after these two matches, we shall shift from the round of 16 to the quarterfinals. This is one of the best, I think, FIFA World Cup that I have actually witnessed. And it was very successful in the United States of America, in Canada and Mexico, that all the matches were staged. So keep enjoying. And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Yee-hoo.
3: Leica Radio.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
4: The Janan and J. Dot Summer Sale is now on, with up to 70% off.

0: Running fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janana.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Summer Sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. To trade, visit heraldplastic.com.
2: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
3: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
3: Also explore 2026 cruises.
2: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at
4: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
5: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
4: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
9: That Leica Gold is the UK's first Asian retro music station. Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
10: अब जैसे मैंने वादा किया था, अगला गाना जो है वो फिल्म है दिल दिया दर्द लिया, जहां दिलीप साहब जॉनी वॉकर साहब के साथ बात कर रहे हैं और नाराज़ है और कह रहे हैं कि मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, और जॉनी साहब उनको कैसे मना रहे हैं वो सुनिएगा।
11: कभी नहीं भूल सकता, मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता।
12: ये ना कहिए, भूल तो सकते हैं आप।
11: कौन सी ऐसी चीज है जो इस जिल्लत के नक्श को मेरे दिल से मिटा सकती है जो मुझे इस घर से मिली है?
12: चीज आपके सामने मौजूद है, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, गिलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में।
10: और फिर बोतल का सहारा लेकर दिलीप साहब ने ये गाना गाया। दिलीप साहब ने, मतलब के रफी साहब ने, कभी शराब की एक बूंद नहीं उन्होंने छुई और गाना गाया।

0: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
1: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
0: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 g 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
1: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
0: Big deals, big savings, while stocks last. Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-396-35757. Greens by Danube. Prime location,
0: high appreciation
2: in Dubai.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: Birmingham Indian Film Festival is here. Experience groundbreaking premieres, powerful documentaries, restored classics and the very best of British South Asian cinema at Midlands Arts Centre and Lockworth Cinema Wolverhampton. Discover stories of courage, identity, motherhood, disability, love and change. Plus meet the filmmakers through exclusive Q&As and panel discussions. Don't just watch cinema, experience it. Book now at birminghamindianfilmfestival.co.uk. Radio Partners, Leica Radio Network.
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
6: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
7: इट वाज जस्ट अनदर डे, अ फैमिलियर ड्राइव थ्रू फैमिलियर कंट्री, बट देन जस्ट अराउंड द कॉर्नर came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
0: Order online at pujasweets.com from barfi, laddus, gulab jamun.

0: Nine track two, Buddy. We got a friend by the name of Buddy. Nice name, isn't it? It's very nice, sweet, Sanam. There's a Buddy listing right now. Hello to you. Sorry, that sounded very kind of flirty, and no, I didn't mean that. Hi, Buddy. Hi, Buddy. We're on the way.
1: Playing next with Raj Patton.
0: Stand by, Love Miller Hit Hit is on the way.
1: Drive is sponsored by Pepe's. Harissa Honey Melt. New at Pepe's for a limited time only. So Pepe-licious.
2: ਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਖ ਰੋ ਇਨਨੈਸ ਸਰਪੰਚ
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ
2: ਸਰਪੰਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिज है ना
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
5: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
7: Lester Mella is back.
8: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
7: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
8: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
7: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
8: Arts Council England.
9: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
1: Miss your favourite show on Laika Radio Midlands? You can now listen back at laikaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to laikaradio.com and the Laika Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
10: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में
1: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: sponsored by Pepe's. Fancy trying something new? Pepe's is launching, for a limited time, a rich harissa sweet hot honey and melted cheddar in focaccia. Harissa honey melt. Go on, try it.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 8574 8410। साफो ट्रेवल, at all protected.

0: Leica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: Safo Travel, auto protected.
3: आपके सामने एक रेड बटन है,
4: दबा दिया।
3: नहीं दबाना था।
5: The madness is back, Dhamaal 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहे।
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamaal 4, directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
5: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
9: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
0: The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.